मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत थिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर पूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते

का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो चेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम।

कौ सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

0: जी गुरनाल इश्क मिठा, शादी का महीना है, डांस करो, बर्थ सेलिब्रेशन करो, वो भी डांस करो।
1: आई लव दीज ट्रम्पेट्स इन द शादी वाला माहौल में, यू नो दैट पम पम पम, इट जस्ट मेक्स इट
0: बेसिकली गिव्स यू अ वार्निंग,
1: या लाइक इतने सारे लड्डू खाएंगे। वेल इफ यू वांट टू एड सम मोर टू द प्लेलिस्ट यू कैन डू दैट ऑन 0701 106 106 राइट हियर ऑन द ब्रेकफास्ट विद रहमत एंड जमील। इफ यू वांट टू सेंड अस कॉफी इवन फ्रॉम कनाडा बॉबी उस्मान यू कैन नाउडेज।
0: बाय द वे इट वर्क्स सिंपली, यू कैन फ्रॉम Canada, you can even literally order online and we'll just get delivery here.
1: It's available and it's so easy nowadays.
0: Very possible.
1: But as we were mentioning, if you don't have a plan this weekend, then we have a chance for you to come and join us at the UUF pop-up market.
0: Yep, so October is finally here. We always know we have Navratri coming up in a particular month, then we have Diwali, then we have wedding celebrations as well. So we need nice, pretty outfits, and you can get them at only one place and one place only from 2nd, 3rd, and 4th of October at the Oshawal Center at the UUF pop-up show.
1: It starts tomorrow, it goes all the way to Sunday, so don't tell me you don't have an excuse not to go and check it out. Get your neighbors, get your friends, get all your girlfriends as well, and join us for the UUF pop-up happening this weekend. East FM will be on ground.
0: Yep, on Saturday from 10 a.m. onwards. So if you want to come and shop with us as well and see what Rama's going to pick for you, I don't mind actually.
1: Yeah, because you know we know about the next Mehfil, so we will make sure you're ready for it as well.
0: Absolutely.
1: In the meantime, right now, we are going to be jumping on the other side of 8 o'clock. Remember, it's World Poetry Day today, so why don't we introduce the best guy in the world of poems? We'll see you on the other side of 8.
2: Hi, this is Farhan Akhtar and you're listening to East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निकाल। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तू जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं।

लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये नशा किसका है तो मैं आपको बता दूं, मुकेश की आवाज़ का नशा रहेगा आज। हमने सोचा कि काफ़ी दिन हुए हैं इनकी आवाज़ के, एक आधा गाना तो सुनाते हैं लेकिन मुसलसल नहीं, तो चलिए

और पारो चोड़ा ने कॉल किया, कहते रोज सुनती हूँ आपका प्रोग्राम, आज तो आपने न जाने सुबह के खाने में क्या खाया है, मुझे आपने आज मेस्मराइज कर दिया है। व्हाट अ गुड एक्सप्रेशन। पारो चोड़ा कहते हैं मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा बात टेलीफोन पर आपके साथ भी ना करूँ ताकि मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ। पारो सो गुड। और परवीन भट्ट आप भी बहुत एंजॉय कर रही हैं मुकेश को। यस सर, टुडे इन हिस्ट्री समय आज कई दिन है, इंटरनेशनल कॉफी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस, आज बुजुर्गों का भी दिन है। 1960 में नाइजीरिया गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और 49 में क्या हुआ था, चाइना की स्थापना हुई थी, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, माओ ज़ेडुंग ने कहा। ऑल इंडिया रेडियो की फॉरेन ब्रॉडकास्ट 1939 में शुरू हुई। इट लॉन्च, एयर इंडिया लॉन्च फर्स्ट फॉरेन सर्विस ब्रॉडकास्ट इन पश्तो, डायरेक्टर डायरेक्टेड एट लिसनर्स आउटसाइड इंडिया, पश्तो में थी पहली इनकी। ओके और आज एस टी बर्मन, ओहो क्या मौसीकार थे, सचिन देव बर्मन, पायनियरिंग म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर। अच्छा एज अ सिंगर उनकी आवाज़ बड़ी यूनिक थी, पर क्योंकि हीरोज पर ही फिल्माए जाते थे ना गाने, तो उनकी आवाज़ फिर ज़्यादा नहीं आपने आप नहीं सुन पाए। मजरू सुल्तानपुरी,

0: यूसुफ भट्ट ने कॉल किया, कहते हैं ये फैंटेस्टिक गाना है, मैं अपने तमाम जो गुजराती के लिसनर्स मेरे फ्रेंड्स हैं उनको डेडिकेट करता हूँ। बहुत अच्छे, ठीक है यूसुफ भट्ट। पहले सबसे जो आंसर दिया है जिसने, वो है मंजुला गोरसिया, पहली लिसनर जिन्होंने फिल इन द ब्लैंक किया है। फिल इन द ब्लैंक, मेरे मरने पे लाख रोएंगे, मेरे डैश पे कौन मरता है, ये है क्वेश्चन। मिसेस धंजल, आपको आपने सुन लिया होगा, जैश फ्रॉम वोई द गुजराती सॉन्ग ऑफ मुकेश, यू हैव रिमाइंडेड मी ऑफ माय फादर, आई रिमेंबर हिम हमिंग दिस सॉन्ग अ लॉट ऑफ टाइम्स। चलिए उनके लिए फिर दुआ करते हैं कि खुदा ने उनको खुश रखा हो जहां भी हैं।
1: सलाम और आदाब शहजादी साहिबा और सबको, क्या जबरदस्त प्रोग्राम है मुकेश जी के ऊपर। शहजादी साहिबा, एक रिक्वेस्ट है, फिल्म

0: 40 फ्रेंच शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। डिजों, लियों, स्ट्रासबर्ग और मार्क्से में स्कूलों की हालत पे तलबा सड़क पर आ गए। क्लासों की हालत खराब, टीचरों की तंगी है, कई मकामात पर आग लगाकर हुकूमत विरोधी नारे लगाए गए। आईफल टावर चलाने वाली कंपनी के सरबरा अपने पद से हट जाएंगे। उस वाके के बाद जिसमें हिंदू धार्मिक नुमाइंदों ने आईफल टावर को महिला स्टाफ से खाली करवा दिया, इसे ऑपरेशनल नाकामी माना जाता है। आईफल टावर के मुलाजमीन हड़ताल पर गए। बैप स्वामी नारायण के लोगों ने मांग की थी कि तमाम औरतों को निकाल दिया जाए जब तक वो मौजूद हैं वहाँ। नेपाल में अगस्त माह सैलाब ने तबाही मचा दी, 1400 की मौत हो गई। अब जमीन फिसलने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। 240 घर तबाह हो गए, 1900 खानदान दर बदर हैं। कई नेपाली झोंपड़ियों में पनाह ले रहे हैं। सड़कें, इमारतें, पुल मट्टी के तोदों में गायब हो गए। ये थी आज की खबरें। मैं हूँ परवीन आदम।
1: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
2: All right, this hour, as always, I have something very, very interesting to share with you in Bollywood and beyond. We are definitely going beyond Bollywood today on Bollywood and beyond. And very quirky quiz as well. Spot the bakwas. That is where you have to tell me which statement is true, which one is bakwas. But above all, we've got wonderful music lined up. Coming up is Shankar Mahadevan. I think this is one track of his which the first time when I heard and I was like stunned and breathless. Till date, I feel the same when I listen to the song. It's called Breathless.

0: Hello and a very, very good evening to you. I hope you had a fantastic day. This is the City Lights with Vishal. And is a ghante mein hum baat karenge about a very, very special, how should I put it, person or ek incident jo ki social media pe has been brought up. And a lot of people are complimenting a few people who made sure that ye incident na ho. उन्होंने बहुत ही अपने जान पे खेल के लोगों ने मदद की. विल टॉक अबाउट दैट. आप शायद समझ ही गए होंगे. एंड ऑफ कोर्स आई हैव गॉट योर मिक्स बिट चैलेंज दैट इज कमिंग अप नेक्स्ट. थ्रोबैक थर्सडे है ऑफ कोर्स. एंड थ्रोबैक थर्सडे पे डेफिनेटली आपको पता ही है हमारे 90s के गाने, 80s के गाने, इतने जो गाने हैं हमारे, दैट इज व्हाट इट इज. सो 90s के गाने हैं आज. क्लू आपको पहले ही दे देता हूँ, 90s के गाने हैं. एंड जैसे मैंने बोला कि टॉपिक की शुरुआत इज ऑफ कोर्स एक इंसिडेंट जो हुआ था. भगवान जी की कृपा से एवरीथिंग इज ओके. क्या कहते हैं, हाउ डू आई पुट इट, लोगों ने एक दूसरे की मदद की एंड दे अवर्टेड अ डिजास्टर. So all that you have to do right now is keep it locked only on the City Lights with Vishal.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.